जोजल पाथौ नेपाल सम्बचिन चौपी खुद येला गा त्रयोदशी थोरेडो नेपाल ख आनेना दिशा जिरुबी पाखे नेपाल भाषा समाचार सरकार भूमि वन व विपत नपाया अध्यादेश राष्ट्रपति नाफा सिफारिस छिगुदु प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद कार्यालय सिंह दरबारे मिहिग चङ्गु मन्त्री परिषद बैठक या भूमि नापा छु नेपाल एनियाता संशोधन यायगो अध्यादेश वन नापाया छु नेपाल एनियाता संशोधन यायगो अध्यादेश व विपत नपाया छु नेपाल एनियाता संशोधन यायगो अध्यादेश नापाया अध्यादेश पिथन नेता राष्ट्रपति नापा सिफारिस यायगो को छिनागु सरकारी प्रवक्ता नापा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल जानकारी बियादिल बैठक राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग न्याय विशेष सिफारिस जुगु सचिव निय सोमसित क्षतिपूर्ति ल ल्याएको कोचिगुदु अथिया मन्त्री परिषद बैठकमा पोर्चुगल सरकार याता यस महावाणिज्य दूतावास पलिस्ता यायगु सहमति ल ल्याएको नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सामेकीकरण पाखिया सहसचिव नवीन राज सिंह याता राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीय सचिव पदे बडुवा यायगु न कोचिगुदु अथिया नेपाल प्रशासन सेवा सामेकीकरण पाखे सहसचिव चक्रबहादुर बुढा याता राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीय सचिव पदे बडुवा यायगु नेपाल लेखा परीक्षण सेवा सामेकीकरण पाके नायब महा लेखा परीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारी यात्रा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीय उपमहालेखा परीक्षक पदे बडुवायागु कोचिनागु मन्त्री परिषद जानकारी बिगु ख तान्जानियाया अरू सामे न्यानासङ्गु अन्तर संसदीय संघ आइपियु या सचिव नेसोकोगु महासभा नेपाल निहबोगु जलवायु जागु विपद नपाए आपतकालीन प्रस्ताव सोभे निबो स्वीकृत लाल हागुदु सभामुख डोल प्रसाद अर्याल न्यावयादीको प्रस्ताव महासभा पारित आगु ख प्रस्ताव न्यावयादी से सभामुख अर्याल हिमालय याता मानवताया मङ्का सम्पदा एसिया या वाटर टावर या कथ पलिस्ता यायगु नेथना दिगु ख सावैक्लन जलवायु उपाय हुने हिमालय हिमनदी हिमताले उपयमना सोङ्गु हाथ्या मानव सभ्यता दथिय हाथ्या बोलङ्गु कनादिगु ख वैक्लन नेपाल निपाङ्गु इले फयाचने माघु जलवायु जागु विपत या विशेष ख नेथना दिसे जलवायु न्याय व संसदीय जवाब देता नीति हली संसदी मङ्का भाला व सहकार्य माघु धयादिगु ख नेपाया प्रस्ताव पारित यायगु नेपाया नितिन जक मजुसे आइपियुया सदस्य राष्ट्र व संसदीय नापा मङ्का भाला जुगु नेथना दिसे सभामुख अर्याल जलवायु जागु विपत या हाथ्या या त फेत संसदीय जलवायु कूटनीति या त अञ्चल लिचो लाखे माघुली बियादिल प्रस्ताव दति जुगु मतदान या पक्ष गुस व क्षम विपक्ष नेचामा व तटस्थ सचिव पीकु मत लागु खसा पक्ष विपक्ष लागु मुक गुसौ ने गुगु मत्या सोबे निबोया नीति खुसौ ने सोकु मत मालिगु ख प्रस्ताव मागु मत हया च्याकगु ख नेपाली कंग्रेस झिङ्याकको महाधिवेशन कथन हुगु केन्द्रीय नेतृत्व लिएको नीति थौ मतदान जुइतियङ्गुदु कंग्रेस हुगु नेतृत्व लिएको नीति सुथस्या जिता ऐलनिसे मतदान जुइगु निर्वाचन समिति दुज सचिव राजु कटवाल पिथना दिगु सुच तया तगु खस महाधिवेशन बोतिका त हेदो निस ङेङमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुगु केन्द्रीय समिति लिया मतदान यैगु जुगुदु केन्द्रीय निर्वाचन समिति संयोजक नापा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काया कथा मतदान सुतस्या जिता इलानिसे सनिल खुता इतक कन्याय मतदान या नीति महाधिवेशन प्रतिनिधि या प्रदेश प्रतिनिधित्व या लिधंसा ब्याग्लम ब्याग्न मतदान केन्द्रीय व्यवस्था या अगुदु चिङ्या खगु महाधिवेशन विधान संशोधन याना कंग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति निसव गुइन हेमा दुजो लिए टेङ्गुदु सरकार खुशी पाव चलया हुने डिनाचोङको मुख्य सडक फिङ्का थोया न्हे न्याके टेङ्गु ज्या याक्न यायगु धागुदु सडक विभाग प्रवक्ता शुभराज न्यौपाने प्राकृतिक विपद आङ्कगु राजमार्ग व सडक भिङ्केगु ज्या याक्न जुया चोङगुली मोहनी न्याय मुख्य राजमार्ग न्यायगु वेक्न धयादिल पोटेकोसी खुसीपान लिचो लागु रसुवा नापा नुवाकोट धादिङ चितवन गोर्खा जिल्ला सडक भिङ्केगु ज्या न्याज्याका चोनागु प्रवक्ता न्यौपाने जानकारी व्यादिगु ख
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भोटे कोशी खुशीवासन लिचु लापी छ्याजय अनि अस्थायी आवास देखेता येकु पी साझेदार संस्था सम्प्रस्ताव आह्वान यागुदु मिगछको सूचना पिथना दिस प्राधिकरण रसुवा नुवाकोट वार्ड धादिङ जिल्ला या खुशीवान लिचु लागु स्थानीय जलाकला या छ्याजय शहरी विकास भवन निर्माण विभाग स्वीकृति मापदण्ड कथा निर्माण या त यकुपी साझेदार संघ संस्था तथो इनाफ यागु ख सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा नापा स्विजरल्याण्ड फेडरल अफिस अफ कम्युनिकेसन्स FCOM या वरिष्ठ नीति सल्लाहकार ईशा वेल लोइसा नाप्लाना दिगुदु नाप्ला ज्याजले नेपाल स्विजरल्याण्ड तथा सूचना तथा संचार प्रविधि लाग्या गुहाली काल बिल नापा थिथि विशेष खलावाला जुगु ख संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा थिथि लाग्या स्विजरल्याण्ड सरकारसँग वोगु ग्वालिया तल सहना देशना दिसे वैगु दिने सहकार्य ग्वाली तव्याकेता नेपाल एका चुनागु धेया दिल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता टेलिमेडिसिन सेवायत अञ्च सेना केगु व्यवस्थित याना यङकेगु विशेष सहलभ्याका दिगुदु टेलिमेडिसिन सेवायता सेना केगु कथन ह्याकेता मागु बजेट जनशक्ति हो संस्थागत व्यवस्थापन विशेष खलावाला व्याका दिगुदु स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय रेबिजले निवारण नपाया राष्ट्रिय रणनीति व कार्ययोजना 2083/87/88 स्वीकृति आगुदु रणनीति सन् 2030 तकै खिचाङ याना थिगु ल्वे रेबिसन जुइगु व मनुषिगु जोयाता शून्यसँग कोकायागु आजु कयागु मन्त्रालय या धापुदु रसुवाया भोटे कोशी खुसीसँग वको खुसी पालिपा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष व प्रधानमन्त्री राहत कोष आर्थिक गुहाली वैगु झोन्यासँग दु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय कथा कोसे थिथि खात्याम हिग तके मौजा ठेवा छिन्नेगु अर्ब कुगु करोड चेगु लाख पी छदो पेस व खुई पेतका ठेवा मुङ्गुदु अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा जुगो आर्थिक अनियमितता हो कासा मिलो मत्तो नापाए अनुसन्धान कोचाकुसे प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी पेमा विरुद्ध मुद्दा न्याकेको सिफारिस आगुदु अनुसन्धानसँग खुइ खुगु लाख ने सोधो बराबरी अनियमितता जुगु लिचो नापा सिआइबी हिग सरकारी वकिल कार्यालय प्रतिवेदन ल लागु ख प्रतिवेदन एन्फा अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेवाङ मुछ्याञ्जे किरण राई दाभरी रविन्द्र जोशी व लेखापाल सञ्जीव पाण्डे यता प्रतिवादी देखेता सिफारिस यानागु सिआइबी प्रवक्ता अनुप शमशेर जवरान जानकारी बिया दिगु ख अनुसन्धान या झोले वोगु दसु व भया अध्ययनस खुइ खुगु लाख ने सोदो अनियमितता जुगु खनेदु उकियाली धनस्या उमिता प्रतिवादी कायम याना मुद्दा यागु सिफारिस यानागु प्रवक्ता जवरान जानकारी बिया दिल एन्फाय आर्थिक कारोबार निर्णय प्रक्रिया व थिथि ढेन्डेवाला नापा स्वागु गतिविधि दति केन्द्रित जुया सिआइबी अनुसन्धान यागु ख मिग वगु वाया हुने बाँके वा बुके त धङ्गु क्षति जुगु दु यो थासे वा बाली कोदु या किसान तेसा हत्या फेमाला सङ्गु दु फे नापा वगु वाला पाके जुई धुङ्क गु वा पुसाके त धङ्गु क्षति जुगु राप्ती सोनारिया साकार कृषि सहकारी संस्था व्यवस्थापक जमान सिंह वोलिन जानकारी बिया दिगु ख वेकया कथा किसान तेसा सच्छिट्या बिगहा खे पिना तगु वा पुसा वा बालिस बर्खा सेङ्क बिगु खसा वा दुकागु इले सेङ्के धुङ्कानी वैगु दया नीति वा पुसा या म जुइगु वेक लन्थया दिगुदु बाँके मुक्क ने पेङ्गु दो न्यास नि खुगु हेक्टर बुखे सुई सुङ्गु दो न्यास नेगु हेक्टर के वा पिज्या सिना ज्याजुगु ख थुगुसी सुई सुङ्गु दो न्यास सुङ्गु हेक्टर क्षेत्रफले सिना ज्याजुगु कृषि ज्ञान केन्द्र या सूचना अधिकारी शर्मा जानकारी बियादिगु ख नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ नखा चखाया इले तोकियागु शिवे उप सवारी भाडा मकायता स्वपु दुगु सकल दथि इनाप यागुदु महासंघ महासचिव टेकनाथ गौतम या कथा सरकार तोकियागु शिवे उप
भाडा कागु काइगु सवारी जोला यता कारवाही यागु जानकारी बिया दिला सरकार थुगुसिया मोनिया नीति थोए असोज 23 गते कनेनिसी देनयङ्क यात्रु बाघ सवारी जोलोङके नापाङको टिकट बुकिङ च्याकिगु कोची धुङ्कगुदु महासंज्ञा कथा नापाङको टिकट बुकिङ काउन्टर खटेजेपी कर्मचारी तेसा तोकेयागु वस जोलाङ वा मसिका पौ अनिवार्य कथा छेलेमा यात्रु नापा बाल्नाको व्यवहार यासे अपुइगु रुट या नीति टिकट लल ह्याता वा सुरक्षित लम्फुया नीति सुनिश्चितता याना बिता इनाप्यागुदु मोनिया मोमो याता व्यवस्थापन यासे थे असोज 25 गते नलिसुवा निसे वैगु कार्तिक 8 गते तक नारायणगढ ये सडक खण्ड ट्रेलर नापाया त धङ्गु सवारी जोलन ह्याके गुली पङ्ग थनिगु जुगु दुसा न्याना चङ्गु कानुन कथ नसा जोल वास सिसा पुसा मेगु मजी मगागु जोल कुबिगु सवारी जोल या त वैगु वनी गुली दासा छुन पङ्ग थङ्गु मधु अथ्याना नलिसुवा निसि हे वैगु कार्तिक 10 गते तक यात्रु बाहक सवारी जोला नीति नेपाल यङ्कत्ता हागु व मध्यम रुट परमिट च्याकिगु जुगुदु सडक या विशेष प्रकृतिया हुने निश्चित आकार प्रकार सार्वजनिक सवारी जोलन ह्याकिग त सनागु लि धासा पङ्ग थना तयागु महासङ्घ धागुदु ये सोनिगया प्रमुख नाका पलिस्ता यागु यात्रु सहायता कक्ष अनुगमन व सहजीकरण या नीति यातायात व्यवस्था विभाग फोकल पर्सन नापाया पुच परिचालन यागु जुगु दुसा महासङ्घया थासङ गङ्गबु बस पार कलङ्की कोटेश्वर गौशाला व चावेल लाग्या फाला लल हागुदु मिखायाता मतिना यानु मिखा स्वेगुलिता सुरक्षा ज्ञानु धैगु नाराना पाथी थी ज्याजो गोसा गोया थौ विश्व दृष्टि दिवस हनासङ्गु विश्व दृष्टि दिवस दापतिक अक्टोबर लाया निकगु बिहिबार हनी थुगुसिया नारा मनुतेगु मिखा बालक बिचा या त मतिना लला फेमा नापा सरकार सपुतैपी दथी अफुइकु कथा गुणस्तरीय मिखा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित यायता इनाफ या नत अगुदु नापा नारा विद्यालय कार्यस्थल व नीति निर्माण जुइकु थासे मिखा परीक्षण व जनचेतना गतिविधि या तव्याकेतन बिगुदु आदेश पिने अबुख थुगुसी रसायन शास्त्र पाख्या नोबेल शिर्फा फ्रान्स हेनरी बी कागन व जापान या केन्सो सोई या त जैविक पदार्थ देखे गुली विशेष कथया रासायनिक प्रक्रिया स्वत उत्प्रेरणा नपाया खोज या नीति शिर्फा लल ह्याटिङ्गुदु रोयल स्विडिस एकाडेमी अफ साइन्सेस हिग स्कट होमे थुगुसिया रसायन पाख्या नोबेल शिर्फा ट्याकुमासिया ना घोषणा या गुख साहित्य पाख्या नोबेल शिर्फा हिग घोषणा या धुङ्क गुख सक्कने शान्ति पाखिया शिर्पा घोषणा जुइको अर्थशास्त्र पाखिया नोबेल स्मृति शिर्पा वैको सम्पार घोषणा जुइको ज्याजदु आ मौसम या जानकारी थौ कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश हिमाली लागया मोथासे मल नापा लाप्सा तोया मध्यम टकया व लुम्बिनी कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश हिमाली लागया छगुनीको थासे मल नापा लाप्सा तोया भतिचा वा वैगु अचुपुक वा वैगु सम्भावना दु कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश पहाडी लागया छुन थासे मल नापा लाप्सा तोया मध्यम तकया व लुम्बिनी कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश पहाडी लागया हो थासे मल नापा लाप्सा तोया पु नापा वा वैगु अचुपु नापा कुवा वैगु सम्भावना दु मधेश नापा कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश तराई लागया हो थासे लुम्बिनी व सुदूर पश्चिम प्रदेश तराई लागया छगुनीगु थासे मल नापा लाप्सा तोया भतिचा तस्क वा वैगु सम्भावना दुसा बागमती गण्डकी प्रदेश पहाडी व तराई लागया छगुनीगु थासे तस्क वावैगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापुदु वङ्गु निपे घौस ये सोनिगे क्वाज नि पेङ्गु फुटी सोङ्गु डिग्री सेल्सियस तथी लुगु खसा थौ नि पेङ्गु निसेन नि हेगु डिग्री सेल्सियस तथी चोनिगु दुकुमादु थौ सुथे ये सोनिगले सुथस्या ज्ञाता इजुया ये सोङ्गु मिनेटे खने दुगु निभा सनिल खुता इजुया पिन हेगु मिनेटे बि रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुन चिताइले नेपाली भाषा समाचार निनादिस शुभ है।

0: ngalaita kang magyo ki sne gomalarang dakri check up to mikyu kyasma zuki nangla na da tonying bagal simating la kasre kalega simatrang mitio men kang le kino ina tukoi netang umwij dublati ta tukoi luksoti gekulati kang ki gogina la sar sar dakwin sing ta dukai zanse ta na ki lerim tio zing kyong ki goinang ki atha mitui kang hak ma ko ne ti dukane mitio tingla tran kalela shur simatrang men kang la phiu inang ki ina la tukoi kang ina ditilas
1: ta dite dupule la तमगम दाद्वासी सके समाति छ महिना अथवा वार्षिक रूपलाई दिए कम्युनिटी ला यहाँबाट निकिसनिकी फङ्सन टेस्ट रेनल फङ्सन टेस्ट इज कलेज अफ लिभर फङ्सन टेस्ट सिबिसी सिने रगत किति युरिनारी सिने पिसाब किति मुटुकी इसिजी होइन कम्युनिटी ला अब दोदोइति क्यासिङ रोग बनि पत्ता लागि छ होइन तम तानु तयार निके समस्या खाने के दोदोइति क्यासमा समस्या खाने के के गोज नलाइला थाइरोइड किति हुन्छ थाइरोइड के के गोज नलाई किति भ्याकेन्सी इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी गोसी टुप्री अनुसार डोगोजा तमा तिदी तमा त मुटु कोलेजो फोक्सो तमा गा दम ओतो निकास फेरि चिरो निकाले उसी ती अनुसार किरा एक्सरे सामा कि गो इन्जा हैन तिकि कम तिलं पट्टै दि तमा गा त लोरे लोरे लाटी कोलेस्ट्रोल सामा छे क्या तक तु कैसे दि लियाम नसे नि लंगा इन्जा छ छ महिना ले किजा त नेपाल त पुरै सिस्टम नि छुति नसे ताकन त हारि दि रेडियो नि नि सकि त नि दि नि नि मिला हक ओने तमा गा लोरे रे छ के दि तिन दना छ त नरे इन्दलो
0: नसे नसे
1: हैन नि बोनि दि नि नि तिगेना तु कम तिलं डक्टर ले मलाई छेते नि टक टक टक केने सिस्टम वाइज गर्छ तम कता दिन चुपुरी हुन्छ जी त दति हुन्छ छो ले मै लोपला जिगन ले मै गो छि नै रहिन दति
0: हालु
1: बिरामी त डक्टर कि दिन जबति दति चुपुरी मसि जित दुगा छित दिन त न छिन र नपा
0: नसे नसे
1: ए त गुचे ला कि राम ले म गुरु पाए तिरो त बिरामी के ले म डक्टर पाए तिरो दिन जबति त छ गोमि न जिन म ल मङ हिजु न दिन न ला
0: नसे
1: किले सि ले म छ थौला मङ यसम दुपले त नि भनि हो जने यता तम कता
0: सुगर कम से गोसुं
1: होइन दम हो त चुरट छेउमा छु प्रेसर हाई हो त छतङ रेटमी छेउमा छु तमाने कम्ती लङ दोतोइ किसी कसैले
0: नसे त नारिङकी रेडी नेपाली तङ सेरिके कि ल्यारिम सेरी डोलुकी ल्यारिमला छाङलेन ठेलमुरङ जुनोस नङ तुसो बिजी रङ जुनोस नङ तुसो नगुब्ला डाक्टर साहबला यिङ थाक माने थुजी छ सपिन लस
1: रसिए थुजी छे नलङ तमा रेडियो नेपाल
0: नसे
1: तमा नेपाल कि राष्ट्रिय पसर निम्ति
0: नसे
1: इनाङला नलङ तमा गन्ये किसाङ नला ने सिउ तिन तिके लपु पाए छसु हैन
0: तमा
1: पक्कुला थुजी छे सिबेन्या तपनो ए के जु रेडियो नेपाल कि तमा सञ्चालन नजु तमा कति प्रोग्राम कि तकु टिम लारङ यात पनो धन्यवाद
0: नसे थुजी छे नसे छाकलेन ठेलमुरङ जुनोस नङ दुसो बिजिरङ जुनोस नङ रेडियो नेपाल ने तोङिन ओदुप आरिङ कि शेरी कि किलारिम शेरी डोलु किलारिम ला तुसो नगुब्ला डाक्टर साप्ला निङ थाक माने थुजी छ सबिन लसे लसे आरिङ किलारिम ला डाक्टर सुनाम कि सुङ नगु फोटेन कोर कि खेन तोक तियो लेंगे तियो तेरी ला पेंशन बु गी सिने निरे ई शे क्यान वे डाक्टर सुनाम कि सुङ गु दोके रंग तुसो तुसो ला मेन खांग ला फेम ने थोटेन जास कि तु छांग आरिक तियो पंगथोप सिंग तुरंग ने थामा तियो पंगथोप सिंग दकपि थोटेन ला पेंशन बु गी तुरंग ने निमाला न्युंगशोक ला छुजो गंटा टुक जिम्बु छुजो गंटा जिक ति युकु तुरंग ने एक्सरसाइज तियो कि तु सेमला आला स्ट्रेस तियो माला क्याने सेम कि मु क्याने युतुप सिंग दकपि थोटेन ति ल्यामु डी सिने लेंगे तियो ला तेरी ला शोपिन तेरी कि दक दकपि थोटेन ला यांग ना हेल्थ ला खक्षन पोसी गो कि जुला ना जातियो यांग ना कांग कालेरे थोंग sing sherkyak thuden sokpa men khangla phebne zuki jaski gogi menpa tui tongu nyenne menpa tui bindup men tiwa tu sola shegogi laseta arin ki lerim ki ting shokla le putap gi lengi tiola kang shop si di lerim da puteri ki pirmi lerimin dilayar ge tang ngel mu zopla khangki gogi sru korla nirangla tongu tiwa nangdo nang sine shopin nirangla tongu nangubla nire ki email id ti sherpa program info @gmail.com in laseta ting shokla sonam

जु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिर्दी ढाङ्निदा झेनमुला ग इन्दिरा थिङ युलु चोहो रामचन्द्र पौडेलसे समृद्ध नेपाल सोबारी सरकार तसाई कि खाजी बैन गोर्की थुम्ला जेखेन बङ्ग्याम आखाम्बा ताबासे मोकुन थुम्ला गिक ताबारी खाम्दोला विशे सुङबामुला नेपाल उद्योग छोङ महासङ्घला मुल्मी कादेथेन रूप ताबा धुरी युलु चोहो पौडेलसे समृद्ध नेपाल सोबारी निजी थुम स्यान्दो थुम बिमा जिम्मेवार तासी गाछा वाङला बिबार राङसे मानबा मुला विशे सुङबामुबा युलु चोहो पौडेलसे दाते ला जाम्बुलिङ प्रतिस्पर्धाला धुरी महासङ्घसे राङला युलबाङ सञ्जालदा मोक्युल नोर सञ्जाल थेन थुइबान नेपाली उत्पादन थेन सेवादा झाम्बुलिङरी धोना लाबारी रो लाला बिबा नोन राङसे मानबा मुला बिसी सुङबा मुबा काइब्लोन बालेन्द्र साहथेन रिमटिम पर्यटन थेन नागरिक उड्डयन ब्लोन खड्का राज पौडेलला भङ लिचा ह्युलन नाङरिन सेङ्बा वायु सेवा कम्पनी कार्य स्वीकृत भाडा बिमा च्याङना टाङ्गारी टिकेट चुङबारी सहमत ताबामुला प्रिबाला धुरी कम्पनी कार्यसे भाडा लेना लाबा विवाद ताम खाबा लिचा काइब्लोन साहसे चुतामरी सेम ओन्स्युबामुबा चुलिछा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यान्से तिनी ह्युल नाङरिन सेङ्बा वायु सेवा कम्पनीला धान पोका देथेन काठुई लाबाहिनला काठुई लिचा किन्बा भाडा बिमा च्याङनारिन टिकट चुङबा ग्लुबा ताम्री वायु सेवा कम्पनी कादेथेन ताम ढिक्पा मुला बिसी क्यान्से पाङबा मुला रोङसा ब्लोन शिशिर खनाल थिएन अस्ट्रेलियाला रोङसा ब्लोन सिनेटर पेनी भाङघुङ्री नेपाल अस्ट्रेलिया ब्रेलवाला ताम्री काठुई ताबामुला अस्ट्रेलियाला मेल बन्डी तिनी रूपतामा युल्नी गुङला ब्रेलबादा दातेला बिमा ज्याबा शोभा ताम्री लेङ्मो ताबामुला बिसी रोङसा ब्लोन खाङसे पाङबामुला ओजा दुहिरी अस्ट्रेलियाला रोङसा ब्लोन मङ्से नेपाली भाल धुई ग्याम प्रभावित थेतमा रि दुङ्युर मुला सुङबान दुङाला धुरी अस्ट्रेलिया नेपाल छ्याम मुला बिसी सुङबा मुबा ब्लोन खनालसे विपदला धुरी अस्ट्रेलिया सरकार थेन अस्ट्रेलियाला मिनी ग्याम याङबा रोदा थुजेछे सुङबा मुला स्याहार थिएन क्लाङ ब्लोन थिएन त्रिभुवन विश्वविद्यालयला रो कुलपति सस्मित पोखरेलसे विश्वविद्यालयला स्याहार सुधार लाबारी स्याहार क्यालेन्डर सुशासन थिएन प्रविधिला प्रयोग लानन्तोला बिसी सुङबामुला किर्तिपुरला त्रिभुवन डान दिमखाङरी सेङ्बा त्रिवी वाल्ला डुचुई निस्सा तिदिङ धिन्छेनला चिसाङरी चोबाङ लास्युबान ब्लोन पोखरेलसे विश्वविद्यालय दा धुई अनुसार सोबान बोर्दोला बिसी सुङबा मुबा ब्लोन पोखरेलसे जाँच भर्ना ब्रिबा डोबा हेन्से रिजल्ट तेबा धोना मोकोन प्रक्रिया धुई तालिका अनुसार लाबारी धान पोका देदा सुङबा मुला ऊर्जा किनेर थिएन सिंचाई ब्लोन विराज भक्त श्रेष्ठसे डिजिटल ग्याम बिजुली भत्तिला टाङ्गा फाबारी सुङबा मुला दातेला धुरिन निश्चुई सोम प्रतिशत मिनिसे राङनोन काउन्टररी निसी टाङ्गा फाबा तथ्याङ्क मराङबा मुला सुङबान ब्लोन श्रेष्ठसे चु धुइदा मोकोन ढिक्सी पोदोला बिसी सुङबा मुला डिजिटल ग्याम टाङ्गा फामा मिनिदा दुई नोन च्याङना ताबा टाङ्गाला कारोबार च्याङना तामा वित्तीय पारदर्शिता थिएन सुरक्षा नोन लेबारी खाम्बा बिसी ब्लोन श्रेष्ठसे सुङबा मुला नेपाली काङ्ग्रेसला चुइङाछा ग्रेन वाल्ला छाड गे समिति धामबारी भोट पिन्बा दुई नाङ्गर स्योला निस ह्यामादा तोक लाबा मुला तिनी स्योला चुइङ ह्यामादा तोक लाबा दुई सोमरेम लेसी नाङ्गारदा तोक लाबा हिँला जामेकोला जाजाकोला लैङ्गिक थिएन यौङ्गिक अल्पसंख्यक थिएन सामाजिक सुरक्षा ब्लोन सीता बादी थिएन नेपाल डिस्युबा अमेरिकी गे तेन्बा ग्लेबोन मेगन बेल्डिन रूपतासी लेङ्मोला स्युबा मुला रूपतामा नेपाल अमेरिका ब्रेल्बा रसुवा छ्याम भाल प्रभावित थुम्री नोङबा सेकादे दोषी शोभा मी चुङबा ग्लुबा दा काबा थिएन युलबाङ विकासला थुम्री रो लेना लाबान बोर्बा ताम्री लेङ्मो ताबा मुबा ओजा धुरी गे तेन्बा ग्लेबोन बेल्डिन्से रसुवाला भोटे कोसिरी खाबा भाल्डी सिबा कादेला भ्ला साङ्गे ह्युल्डी धोगाई सुङबान डोङबाला दिम थेमेसे चु धुङाला धुरी सु नाबारी खाम्बा भङ याङ्गाई बिसी सुङबा मुबा जाम्बुलिङला शेर्पा कादे गिक तागे विवाद ताम किन्सी तिनी हेन्से भारतला लोलो लोलो थुम्री जाम्बुलिङ शेर्पा वाल 2026 तेन ग्लोबल शेर्पा डे तीबा मुला जाम्बुलिङ शेर्पा संघसे भारतला नोप बंगालला दार्जिलिङ
सोना दाथेन कालिम पोङरी तिनी हेन्से चुई तारिख दोना सोमरा लोलो लोलो गेकोर सेङसी धाङ बनमुला वाल्डी जाम्बुलिङला गोर निचुई गा ह्युल ग्याम प्रताक्षेन भर्ची वल्डी मुल्मी कादेसे पो किन्से दामुला वाल्ला तिनी खेन रेनपो चे खेनपो साङपो राङग्युङला ग्रेन डोनपरी ठोङसेङ वाल ताबामुबा वालदी शेर्पा गई धर्मा रिमछिम थेन राङदा घोसेना लाभा से कादेदा खारङ लासी सोना लाबारी खामला भिबा ताम थेन जाम्बुलिङरी ठाम्सी चिबा शेर्पा कादे गिखेन शोभा ताम्री काठी ताबा गेकोर मुला बिसी गानीला सानग्युर बोन ग्रीष्मा शेर्पा से पाङबा मुला मिदा माया लागे दृष्टिदा सोना लागे विवा ताम्दा किन्सी तिनी लोलो लोलो गेकोर सेङसी जाम्बुलिङ दृष्टि दिन्छेन धाङ बनमुला जाम्बुलिङ दृष्टि दिन्छेन दिङे दाङसे अक्टोबर लाला निछा बिहिबार धाङबा लाबामुला चुपालसेला नारासे व्यक्तिगत रूपरी मिदा सोना लाबन सरकार थिएन सरोकार ताबा कादेदा मिला लुही सेवा ज्याना लासी पिनबारी मोइजेन लाबामुला साउदी अरब से राज सलमान मान बीए सहायता थेन राहत केन्द्र के एस रिलीफ ग्याम सरकार दा मिनिदा तोबा सेकादे पिनबा मुला ओजा गेन्दुन से पिनबा सेकादे नेपाल शिवबा साउदी अरब ला लेबोन फहद बिन मोहम्मद बिन मौसु खर्से विज्ञान थेन नव प्रवर्धन ब्लोन महावीर पुन दा पिन शिवबा मुबा ब्लोन पुन से रो लाबासे साउदी अरब दा थुजे छे सुङबान चुसे युल्नी गुङला भ्रेलबा दा कुङबा सोबारी रो लाला बिसी सुङबा मुबा चुराङलासिन भोटे कोसी भाल दुई प्रभावित थेत्मा दा अमेरिकारी मुबा नेपाल सेन्टर अफ नर्थ क्यारो लाइन से करोड़ घी से लाख चुई घी कर रो लाबा मुला वाशिंगटन डिसीला नेपाली ग्लेबोन खांग्री सेंगबागे घोरी एनसीएनसी ला चोहो ददिन पाण्डेला गोबाङरी मुबा टोलीसे होजा टाङ्गाला चेक नोर ब्लोन डाक्टर सोनिम वाग्ले दा पिनबा हिला नोर ब्लोन वाग्ले से विपदला धुइरी स्यान्दो हिल्डी चिबा नेपाली घेन्दुन थेन थेत्मा ग्याम याङबा रोदा थुजे छे सुङबा मुबा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले स्थायी कमिटीला गिक्छा चिसाङ पार्टी मियो गेजाङ च्यासल डिती बामुला पार्टीला ग्रेन गोबोन विद्यादेवी भण्डारी से चोहो केपी ओली शर्मा थेन ग्रान किन्स्यु बालिछा चिसाङ औपचारिक रूपरी ती बाहिला ग्रान किन्बा लिछा ग्रेन गोबन भण्डारीला च्याम स्थायी कमिटीला सदस्य कार्यसे चिसाङरी पो किन्बानमुला नेपाल यातायात छोङबोन महासंघ से प्रिबाला धुरी तोक लाबा बिमा लाना भाडा आकिनबारी मोकोन्दा मोइजेन लाबा मुला महासंघ ला लोन्चेन जेक नाथ गौतम से सुङबा अनुसार सरकार से तोक लाबा बिमा लाना भाडा किन्बा मोटर कादेदा कारबाही लाबा बिसी सुङबा मुला सरकार से चुपालसेला थासैरी नाङ्गर हेन्से ह्युल नाङला बस कादेदा टिकट बुकिङ ठोङबा निर्णय नोन लाबा मुला नेपाल राष्ट्र बैंक से चुपालसेला तसै छ्याम स्यान्दो प्रिबादा गोसी बैंक थेन वित्तीय गेन्दुन्दा एटीएम मेसिन घ्याम्नोन ग्याजा गिक्ला छार नोट पिनबारी पाङबा मुला राष्ट्र बैंक से पाङबा लिछा तिलाई बैंक थेन वित्तीय गेन्दुन चे छार एटीएम मेसिन ग्याम ग्याजा गिक्ला नोट नोन पिनबारी तिसी जिनबा मुला शरद ऋतुरी गोर सोमचुई घी ग्लिङगाङ क्रेबारी ग्यार्जा निसे मेन्दो ब्रेचुई ब्रे मिनिसे अनुमति किन्बा मुला पर्यटन विभाग से पाङबा अनुसार सन् 2026ला शरद ऋतुरी नेपालला घ्लिङगाङ कादे क्रेबारी चुई कुचुई गिक टोलीला ग्याजा निसे मेन्दो ब्रेचुई ब्रेसे अनुमति किन्बा हिला विभागला सूचना अधिकारी सूरज घिमिरी से गोर सोमचुई घि ग्लिङ गाङ क्रेबारी ग्याजा गासे मेन्दो ब्रेचुई नि जा कोलातेन ग्याजा निसे मेन्दो डु जामे कोलासे अनुमति किन्बा मुला बिसी सुङबा मुला स्यान्स्यु बानु मुबा सानगिर जिन्जी फ्याफुल्ला

ई रेडियो नेपाल थिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समृद्ध नेपाल निर्माण सरकार वा कोनो एक क्षेत्रक मात्र प्रयास सँ सम्भव नै भ राज्य निजी क्षेत्र आ समग्र समाजक साझा राष्ट्र संकल्प सँ मात्र सम्भव हेबाक बात बतौलनि अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक पदाधिकारी तथा सदस्य सब संघक भेट मे राष्ट्रपति पौडेल समृद्ध नेपाल निर्माणक संकल्प के व्यवहार मे रूपांतरण करबाक लेल निजी क्षेत्र आओर जिम्मेवार सृजनशील आ अग्रणी भूमिका मे प्रस्तुत हेबाक स्वयं अपेक्षा राखल बतौलनि। ओ नेपालक अर्थतंत्र के गतिशील उत्पादन मुखी आ प्रतिस्पर्धी बनेबाक लेल सरकार आ निजी क्षेत्र बीचक सहकार अपरिहार्य रहल बतौलनि। राष्ट्रपति पौडेल डिजिटल रूपांतरण आ व्यापी प्रतिस्पर्धाक वर्तमान युग में महासंघ अपन राष्ट्रीय संजाल के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संजाल सँ जोड़ित नेपाली उत्पादन सेवा उद्यम के विश्व बाजार में पहुंचेबाक लेल थप नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ नेपाल हाले भारी प्राकृतिक विपद के सामना कर पड़ल उल्लेख करते विपद के उद्धारक लेल महासंघ द्वारा लेल गेल तत्परता सहयोग सहकार तथा सहकार्यक सराहना कयलनि। राष्ट्रसभा का अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल भोटे कोसी तथा काली गंडकी कॉरिडोर विपद संबंधी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति के सभापति कृष्ण प्रसाद पौड़ेल के आई पद तथा गोपनीयता शपथ करौलनि अछि। राष्ट्रसभा के यही आसीन 16 गते बैसल बैठक राष्ट्रसभा नियमावली 2075 के नियम 167 अनुसार एक सदस्य पश्चात थप करबाक 9 सदस्य विशेष समिति गठन कयने छल। समिति के सभापति में पौड़ेल निर्वाचित भेल छलथि। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सविता गौतम सहितक उपस्थिति में सिंह दरबार स्थित संसदीय समिति कक्ष में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजन कयल गेल अछि। शपथ ग्रहण पश्चात सभापति पौड़ेल आइए विशेष समिति के बैठक सेहो रखने छलथि। शपथ ग्रहण संगे बातचीत कर सभापति पौड़ेल भोटे कोसी आ काली गंडकी कॉरिडोर में भेल विपद सँ नागरिक बाल बालिका महिला प्रसूति तथा अपंगता भेल व्यक्ति के भोगय पड़ल दुख कष्ट आ पीड़ा के ध्यान में राखि समिति काज करबाक बात बतौलनि। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाहक निर्देशन आ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़ग राज पौड़ेल गणेशक सक्रियता पश्चात आंतरिक वायुसेवा कंपनी सब स्वीकृत भाड़ा दर सँ सस्ता में टिकट बिक्री वितरण करबाक लेल सहमत भेल अछि। निकट बढ़त गेल पर त्योहारक मौका छोपि कर हवाई भाड़ा दर बढ़ाओल कहत शिकायत अयलाक बाद प्रधानमंत्री शाह एहि संबंध में अभिरुचि देखौने छलथि। तकर बाद नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आई संबंधित आंतरिक वायुसेवा कंपनी पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि सँ छलफल कयलक। एहि छलफल पश्चात स्वीकृत भाड़ा दर सँ सस्ता में टिकट बिक्री वितरण करबाक विषय में वायुसेवा कंपनी सब सहमत भेल कैन जनौलक अछि। कैनक महानिदेशक मुकेश डंगोल के अनुसार स्वीकृत भाड़ा दर सँ सस्ता में टिकट बिक्री वितरण करबाक आय भाड़ा दर संबंध में सूचना संबंधित कंपनी के बिक्री वितरण प्लेटफॉर्म में प्रकाशन करबाक सहमति भेल अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मान बहादुर कार्के निर्वाचन आयोग स्थानीय तहक अगला निर्वाचन के आंतरिक तैयारी में रहल बतौलनि अछि। निर्वाचन के तिथि सरकार तोखबाक थिक आया एहि तरह तोकल गेल तिथि में निष्पक्ष व विवाद रहित ढंग सँ निर्वाचन सम्पन्न करबाक दायित्व आयोग के अछि। एहि मे हमसब प्रतिबद्ध छी। स्थानीय तहक अगला निर्वाचन फागुन में करबा सन सरकार आगू बढ़ल समाचार सेहो आयल अछि आ एहि मे ओकर सभ कथन छल जे तिथि के संबंध में अखन कोनो आयोग ई बात नहि भेल अछि। हमरा सभक संवैधानिक प्रावधान अनुसार आयोग समेत के परामर्श में सरकार तिथि घोषणा करत, मुदा लंबा समय धरि स्थानीय निकाय खाली नहीं रखबाक चाही एहि पक्ष में छी। एहि अनुसार हम सब तैयारी कर रहल छी। अगला बैसाख स्थानीय तह के कार्यकाल संपन्न भेला कारणे एकर आसे पास रहबासन संवैधानिक व्यवहार अनुसार दुनू निर्वाचन एक बेर भ सकबाक सेहो ओ बतौलनि। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ऑस्ट्रेलियाक विदेश मंत्री सीनेटर पेनी वांग बीच नेपाल ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधक विविध पक्ष में छलफल भेल अछि। ऑस्ट्रेलियाक मेलबर्न में आई भेल द्विपक्षीय भेंटवार्ता में दुनू देश बीचक संबंध के थप सुदृढ़ बनेबाक तथा पारस्परिक हितक विभिन्न क्षेत्र में सहकार विस्तार करबाक विषय में विचार आदान प्रदान भेल परराष्ट्र मंत्रालय जनौलक अछि। भेंटवार्ता में लोकतांत्रिक मूल्य पारस्परिक सम्मान तथा जनस्तर के सुदृढ़ संबंध में आधारित दुनू देश बीचक सहकार के अगला दिन में थप विस्तार करबाक विषय में ओ सब जोर देलनि। ओहि अवसर पर ऑस्ट्रेलियाक विदेश मंत्री वांग नेपाल में हाले
गेल बाढ़ सँ प्रभावित परिवार तथा समुदाय प्रति गंभीर दुख आ सहानुभूति व्यक्त करैत विपद पश्चातक उद्धार आ प्रारंभिक पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणक प्रयास में ऑस्ट्रेलिया नेपालक संघ में रहल बतौलनि। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयक सहकुलपति सस्मित पोखरेल विश्वविद्यालयक शैक्षिक सुधार के लिए निश्चित शैक्षिक कैलेंडर सुशासन प्रविधिक उच्चतम प्रयोग अनिवार्य होयबाक बात पर जोर दिलन। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन स्मृति भवन में आयोजित त्रिवी सभाक 67वीं वार्षिक दिवसक बैठक में अध्यक्षता करैत ओ विश्वविद्यालय के समय सापेक्ष अनुसंधानोन्मुखी आ अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रतिस्पर्धी बनाओल जेबाक बात बतौलनि। मंत्री पोखरेल प्रवेश परीक्षा भरना अध्ययन अध्यापन सब परीक्षा नतीजा प्रकाशन धरिक सब प्रक्रिया समय तालिकानुसार संचालन करबाक लेल पदाधिकारी सबके निर्देशन देलनि अछि। कैलेंडर प्रभावित छात्र में ओकर स्पष्ट कारण सुधार के समय सीमा सार्वजनिक कैल जेबाक हुनक कथन अछि। परीक्षा प्रणाली में फेरबदल करैत आ विद्यार्थी कते लिखत ऐसा ओ कते सीखत एहि बात के मापन कैल जेबाक मंत्री पोखरेल के जोर छल। देशक विभिन्न समस्याक समाधान खोजबाक लेल विश्वविद्यालय अनुसंधान के प्राथमिकता देल जेबाक सेहो विशेष जोर देलनि। विश्वविद्यालयक संपूर्ण सुधार के केन्द्र बिंदु विद्यार्थी हवाक स्पष्ट करैत मंत्री पोखरेल कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहितक प्रविधि के अवसर के रूप में लेल जेबाक बात बतौलनि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ डिजिटल माध्यम सँ विद्युत महसूल चुकता करबाक लेल अपील कयलनि अछि। अखुनका डिजिटल युग मे अखनो 73% नागरिक भौतिक रूप में काउंटर में जाकर महसूस आ ई महसूल तीरल गेल तथ्यांक प्रस्तुत करैत मंत्री श्रेष्ठ ई अवस्था के सब गोटे मिलकर परिवर्तन कयल जेबाक बात पर जोर देलनि अछि। एहि के लेल सचेत नागरिक के सहयोगक आवश्यकता रहल ओ बतौलनि। डिजिटल भुगतानी सँ नागरिक के समय आन जानक खर्च बचत हेबाक नगद कारोबार घटला पर वित्तीय पारदर्शिता स्वच्छा बढ़बाक मंत्री श्रेष्ठ के कथन अछि। संगे काउंटर संचालन में लागे वाला स्रोत जनशक्ति के अन्य आवश्यक ग्राहक सेवा में सदुपयोग कयल जा सकबाक ओ उल्लेख कयलनि। मध्य प्रदेश सभाक सभामुख राम आशीष यादव निष्पक्षता के प्रवर्धन करैत सामाजिक सद्भाव कायम करबाक लेल पत्रकारिता क्षेत्र प्रतिबद्ध होयबाक बात बतौलनि अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ धमसाक 14 सहन सभाक आई जनकपुर धाम में उद्घाटन करैत सभामुख यादव पत्रकारिताक मर्यादा कायम रखबाक लेल संचार कर्मी अध्ययनशील भ सत तत्पर आधारित समाचार संप्रेषण कयल जेबाक बात पर जोर देलनि। सभामुख यादव डिजिटल माध्यम के विस्तारक संगे पत्रकारिता में नया चुनौती थपल उल्लेख करैत व्यक्ति हित सँ सामाजिक हित के केन्द्र में राखि पत्रकारिता करबाक लेल आग्रह कयलनि। ओ सीमांतकृत तथा पाछू पड़ल समुदायक पक्ष में कलम चलेबाक लेल पत्रकार सँ आग्रह कयलनि। ओ संहिता खर्चीला भेल आई भाष्य गलत रहल उल्लेख करैत वित्तीय संहिता पूर्ण रूप में कार्यान्वयन नहीं भ सकल बतौलनि। नेपाल पत्रकार महासंघक अध्यक्ष निर्मला शर्मा महासंघ इतिहासक कठिन अवस्था में रहल बतौलनि। संविधान द्वारा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित कयलाक बावजूदो ओकर संरक्षण के लेल पत्रकार एकजुट हेबाक बात ओ बतौलनि। महासंघक पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय समाचार समितिक पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा पत्रकारिता में भेल डिजिटलाइजेशन के कारण चुनौतीक संगे अवसर सेहो थपल बतौलनि। महतारिक मटिहानी नगर पालिकाक नगर प्रमुख हरि मंडल पत्रकारिता में बढ़त गेल विकृति रोकबाक लेल महासंघक नेतृत्व गंभीर हेबाक बात बतौलनि। कार्यक्रम में महावीर युवा क्लब जनकपुर धाम द्वारा स्थापित शहीद पत्रकार उमा सिंह पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार रिंकू कुमारी मिश्र गायत्री के प्रदान कयल गेल छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले का आई बैसल स्थायी कमेटीक बैठक पार्टी के स्थानीय तहक कमेटी अंतर्गतक अधिवेशन के तिथि तय कलक अछि। पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के अध्यक्षता में पार्टी केंद्रीय कार्यालय चैसल में बैसल स्थायी कमेटीक प्रथम बैठक वार्ड कमेटीक अधिवेशन अगला अगहन 26 गते आ पालिका कमेटीक अधिवेशन पूछ 4 गते करबाक निर्णय कलक अछि। आजुक बैठक के प्रारंभ में केंद्रीय कमेटीक तेसर बैठक सँ पार्टीक वरिष्ठ नेता में मनोनीत भेल विद्या देवी भंडारी पद तथा गोपनीयताक शपथ ग्रहण कयलनि। बैठक अगला अगहन पहल सप्ताह राष्ट्रीय सभा आयोजन करबाक निर्णय कयल। एमालेक प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्य जानकारी दिलनि। हुनका अनुसार सभा में प्रदेश कमेटीक पदाधिकारी जिला कमेटीक पदाधिकारी पालिका कमेटीक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष आ विभिन्न तहक जनप्रतिनिधिक सहभागिता रहत। आब खेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी आई सार्वजनिक कयल आईसीसी एक दिवसीय विश्व वरीयता में नेपाल 16 स्थान में आयल अछि। पुरुष एक दिवसीय वरीयता में नेपाल एक स्थान सुधार करैत 16 स्थान में ऊपर आयल अछि। नेपाल 33 खेल में 939 अंक सहित 28 रेटिंग प्राप्त कयलक अछि। नेपाल सँ आगू अमेरिका 15 स्थान में अछि। अहिना नेपाल सँ पाछू नामीबिया 17 स्थान में अछि। एक दिवसीय विश्व वरीयता में भारत शीर्ष स्थान में रहला पर न्यूजीलैंड दोसर स्थान में अछि। अहिना दक्षिण अफ्रीका
तेसर स्थान में रहल अछि। ऑस्ट्रेलिया चारिम आ पाकिस्तान पांचम स्थान में रहल अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार। समाप्त भेल।

0: राम राम सम्झियो,
1: राम वालेकुम सम्झियो,
0: राम लेकिन सलाम। अब छोराछोरी मन पराइहाले, अब तपाईँ हामी मात्रै बाजेर के गर्ने हो र? अब मिल्नै त परेन होइन।